उच्चारण किया होया। भाई गुरदास जी बयान करते हैं, आप नारायण कलातार जग में परवरे हो। जिथे पटा ने यह गल कही उथे भाई गुरदास जी ने भी अनेक पौड़ियां उचार के यह गल कही। पर जद असी धन गुरु नानक साहब जी वाल देखते हाँ, अकाल पुरख का रूप होंदया होया भी धन गुरु नानक साहब ने कहा, कोई आखे पूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचार, कोई मैनु पूतना आखद, कोई बेताला आखद, कोई आखद ए ते नानक विचार, ते कोई कहिंदा ए नानक दीवाना है। किसे नूं कोई माड़ा कवे ते जिस नूं माड़ा के है वो कदी नहीं कवेगा कि मैनू किसे ने माड़ा के। हर इंसान अपनी वड़ियाई चाहता है, पर धन गुरु नानक साहब गुणा दे खजाने वड्याइया दे खजाने, पर फिर भी गुरु हो के ए निम्रता शब्द विच आप बयान करते हैं। कोई मैनू पूतना कह रहा है, कोई बेताला कह रहा है, कोई बेचारा कह रहा है, कोई दीवाना कहता है कि नानक दीवाना है। धन गुरु नानक साहब कहते हैं, ऐ दुनिया दे लोको, हां मैं दीवाना हां, पर केड़ा दीवाना? ओ दीवाना जिनू परमेश्वर दे नाम नाल प्यार है। मैं परमेश्वर दे नाम दा दीवाना हां, पया दीवाना सहा का नानक बौराना। मैं अपने सहा अपने परमेश्वर उस अकाल पुरख दा दीवाना हां, हों हर बिन अवर न जाना। मैं हरी तो बगैर होर किसे नू भी जानदा नहीं, होर किसे अगे मैं झुकदा नहीं, ते दीवाना भी मैं उसे हरी दा हां। पर एक गल कही तो दीवाना जानिए जां पै दीवाना होए, असी ते उन्नू दीवाना आखदे हां जेड़ा रब दे डर विच रब दा मन विच डर रखे, रब दे पै विच जेड़ा रहिंदा है ओ दीवाना है। अते नाल के है जेड़ा एकाकार कमाए, एक परमेश्वर दे हुक्म विच रवे, परमेश्वर दुख देवे पावे सुख देवे, जेड़ा उस परमेश्वर दी बंदगी करदा है, साहब जी कहंदे हैं असल विच ओ दीवाना है। ते नाले के है हुक्म पछाणे खसम का, खसम उस अल्लाह वाहेगुरु राम नूं के है कि जेड़ा अपने खसम दा परमेश्वर दा हुक्म पछाणदा है, हुक्म मनदा है,

तो कोई भी है किससे भी मजहब दा मनन वाला हर इंसान दे नाल प्यार कर, क्योंकि जद इंसान अपने आप नूं कुछ ना समझे एहो ही समझे मैं कुछ नहीं जो है मेरा परमेश्वर है, फिर मन विच दुबदा ईरखा निकल जाती है और इंसान दे सामने की रह जाता है एक परमेश्वर। ते जद मन विच परमेश्वर होवेगा फिर वैर विरोधी भावना आपे खत्म हो जाएगी, ते जिस मन विच परमेश्वर दा नाम आ जाएगा फिर उत्थे इन्हां शब्दां दा वासा होवेगा, दुबदा दूर होवेगी, ते फिर इंसान अपने साहिब नाल अपने मालक नाल प्यार करेगा, अपने आप नूं मंदा ते दूजे नूं चंगा समझेगा। ऐसी अवस्था जद मन विच आ जावे

अच्छा बनते नहीं, जो अपने आप को पला कहलाते हैं पला बनते नहीं। साहब कहते हैं उनके नजदीक भलाई आ नहीं सकती, अच्छाई आ नहीं सकती। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। हमने अच्छा बनना है, कहाना नहीं। देखना भला बनो लेकिन अपने आप को भला कहाते ना रहो। परोपकारी दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हैं, दूसरों को जीवन दान देते हुए जो परमात्मा से विछड़े हुए हैं उनको हरि की पंक्ति में लगाकर उनका मिलाप करवाते हैं। धर्मी का जीवन ऐसा है जैसे भाई गुरदास जी ने एक और पितर शब्द में कहा, आप सहंदे दुख जग वरसाया। मैंने एक बात सुनी थी, स्कूल के विद्यार्थी अपने उस्ताद को बोले, हमें ये बताओ कि हमें अपने आप को धर्मी कहलाना है कि नहीं। उस्ताद ने बोला, सिर्फ अपने आप को धर्मी कहला कर क्या करोगे? देखना इस बात का जवाब जो है मैं आपको अभ्यास के रूप में दूंगा, प्रैक्टिकल के रूप में दूंगा। हो सकता है जे अगर मैंने बिना अभ्यास के आपको उत्तर दिया शायद आप ना समझ सकें। उन छात्राओं को जब स्कूल में छुट्टी दे दी गई वो अपने अपने घर जाने लगे। रास्ते में क्या देखा? जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में कंडे बिछे हुए थे, कांटे थे, रास्ता ठीक नहीं था। बोतान छात्रों ने क्या किया? अपना अपना रास्ता बनाकर वो रास्ते में आगे निकल गए, दूसरों को बताते रहे जिस रास्ते से हम निकले उस रास्ते के पीछे आप आ जाना। लेकिन एक छात्र पीछे रह गया। उस छात्र ने बोला, मैं तो अभी नहीं आऊंगा, देखना पहले मैं रास्ते को साफ करूंगा। जो रास्ते में कांटे बिछाए हुए हैं उनको हटाऊंगा, साफ करूंगा। दूसरे छात्र बोले, आप क्या करोगे? पीछे आ जाओ, पीछे रहकर क्या करोगे? वो छात्र बोला, ऐसे नहीं, जो मेरे पीछे आएंगे इस रास्ते पे आने वाले उनके लिए भी मैंने रास्ता बनाना है। देखना मैं तो आप जैसा रास्ता बनाकर चला जाऊंगा लेकिन जो मेरे पीछे आएंगे उनका क्या होगा? वो छात्र बोले, आपने क्या लेना है?
کیا آپ

अपने सह दे नाल, अपने प्रभु दे नाल रते गए पाव जिन्ना ने अपना मन अपने साहिब दे नाल जोड़ लिया, ओ सारिया नू चंगे लगदे ने। क्यों जो हर का प्यारा सो सबना का

एक सफल रुख है, परिदा नाम है अमृत, जिन पिया ते तृप्त पाए, ए नाम रूपी अमृत जिन्ने पीता वो तृप्त हो गया, क्योंकि नाम विच सारे सुख हैं, दुनिया दे पदार्थों विच सुख नहीं, एक चीज ले लो दूसरी दी इच्छा पैदा हो जाती, आज इतनी माया है गुजारा हो रहा है, पर इच्छा है इस तो ज्यादा चाहिए, एक चीज घर विच है पर मन दी इच्छा होर वध गई, होर चीज चाहिए, दुनिया दे पदार्थां दे नाल इंसान कदी रजदा नहीं, पर साहब जी कह रहे ने जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पी लिया, नाम जप लिया, उन्हां दे मन दी तृष्णा खत्म हो जाती है, ते जिन्हां ने अमृत रूपी नाम पीता साहब जी कहंदे ने हों तिन बलिहारे जाओ मैं उन्हां तों

पत्नी और पति का रिश्ता बड़ा गूढ़ा संबंध है, पर कई बार इन्हां विच भी प्यार नहीं रहिंदा, क्योंकि जिथे होमे और माया आ जावे उथों प्यार उठ जांदा है। और होमे तां आंदी है जदों इंसान परमेश्वर नूं भुला दे। गुरु नानक साहब गुरु होके गुरु होण दा मन विच माण नहीं, कहिंदे ने ऐ परमेश्वर मैं तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दी रास दित्ती है। जिस तरह कोई सेठ अपने नौकर नूं दुकान ते बिठावे ते आखे लै तू हुण सौदा वेच, ते साहिब जी कहिंदे ने अकाल पुरख मैं भी तेरा नौकर हां, तू मैनू नाम दित्ता है कि ऐ नानक तू मेरा नाम दुनिया विच वंड, भाव मेरा नाम लोकां नूं जपा और मेरे नाल जोड़। ते साहिब जी कह रहे ने अकाल पुरख मैं तेरा नौकर हां, मैं तेरा गुलाम हां, मैं तेरे नाम दा टंडोरा दुनिया नूं दे रहा तां कि लोग सुखी हो सकन, पापां तों झूठ तों ओ बच सकन।

ठंडे बाटे दी पौहल नू छक लिया। उ सवा सवा लख दे नाल लड़न दे काबल हो गए, उस विच इतनी शक्ति भर गई।

लताड़ रहे हो। जिहड़ी जनता नूं तुसीं चिड़ियां समझदे हो, अपने आप नूं बाज समझदे हो। इस जनता विच मैं ऐसी रूह फूक देंगा

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

मांस देह बहर न पावे कछु उपाव मुक्त का कर रही। गुरु जी कहते हैं कुछ उपा कर लै। गुरबाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है, ये सारे भगतों की बाणी, संतों की बाणी, गुरुआ की बाणी, भगत रविदास, भगत कबीर, बाबा फरीद जी, सारे की बाणी गुरु महाराज ने एकत्र की है। ये सारे संतां भगतों के सतपुरशां के वचन हैं, गुरुआ के वचन जो हैं। सो मानस दे बाहर ना पावे कछु उपाव मुक्त का कर रहे। कहिंदे कोई अपना उपा कर ला, कोई जतन कर ला। ये जो तैनू वक्त मिलिया, बहुत गोल्डन चांस मिलिया है, बल्कि बहुत ही अमोलक समा मिलिया है। इस समय दे विच सुनिया सी जे ये वक्त हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, तो मनुखा जन्म दे विच ही हो सकता है। 84 लाख जून दे विच, किसे जून दे विच ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होंदा, ना ही गुरु मिलता है, ना ही सत्संगत मिलती है, ना ही परमेश्वर का नाम मिलता है, ना ही इस दे अंदर कुंडलनी जागृत हो सकती है। बोल सतनाम श्री वाहिगुरु। तीन तरह की कृपा होंदी है, तीन तरह की मेहर होंदी है। एक तो अकाल पुरख की मेहर है, अकाल पुरख की मेहर है। अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर जो सृष्टि करता है, उसकी क्या मेहर है, सानू उसने ये अमोलक जन्म दे देता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। ब्रेन दे देता है, दिमाग दे देता है, कितना तेज दिमाग है, कितना कुछ सोचता है। इस दे विच अपने साथ संगत के ये दिमाग जो ये सुंदर घाड़त है, ये सुंदर रचना है, शरीर की रचना है, सृष्टि की रचना है, जां फिर ये अमोलक नेत्र अखां दे दित्तियां हन, हथ पैर दे दते हैं, जवान दे दती है, कन्ना विच सुन दी शक्ति दे दती है, ये सब अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस जीव दे उते अकाल पुरख की कृपा हुई है जो ये मनुखा जन्म दिता है। इस नूं देवते भी तरसते हैं जो साडे उते अकाल पुरख ने यह कृपा की है, मेहर की है। गुरु जी कहते हैं रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। रामैया के गुण चेत प्राणी, उस परमात्मा ने गुणा नूं कुछ याद कर, अकिरत घाना बन, कुछ याद कर, चेते कर। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। ते क्या तेरी जो जड़ है, कितों तू पैदा होया है, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, की दिस रहा है, क्या नजर आ रहा है, तेरा कितना सुंदर शरीर उस वाहिगुरु परमेश्वर ने बनाया है। थोड़ा जा फर्क पै जाए देख लो कितना औखा हो जाता है। डॉक्टरों को भजे फिरदे असीं, हस्पतालों च भजे फिरदे ही, अखां च थोड़ा जा फर्क पै जाता, कन्ना च सुन दी, दंदा दी, होर सांस सुन, कितनी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कितना औखा हो जाता है, जिसने सारा शरीर दिता है। रामैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सिवार सिगारिया। देखो पंजे तत्व उसने किवें इकट्ठे किए हैं, पंजा तत्वों का कितना सुंदर पुतला तैयार किया है, जिस दे विच ए रूप आई है, आत्मा पाई है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। साहिब का फरमाया जियो देही विच आए पाया, जो सो उसका हुक्म होंदा है। इस रूह नूं, आत्मा नूं, ए पंज तत्त दा पुतला, पंज तत्तां दा ए घर, पंज तत्तां दी ए गड्डी, पंज तत्तां दा ए रथ शरीर, ए प्राप्त होया। ए अकाल पुरख दी कृपा है, अकाल पुरख दी मेहर है। कितना दिमाग कम करदा है, किवें कम कर रहा है, ए माता पिता दी कृपा तां नहीं है, ये तो अकाल पुरख की कृपा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। शरीर की रचना तो उसने की थी। सो अकाल पुरख वाहिगुरु की कृपा है जो उसने सानू ये हथ पैर दे दते हैं, अखां दे दतियां हैं, ये शरीर दे दता है, शरीर दे विच चलन की शक्ति पा दती है, ये रूह नू जड़ा है ये शरीर बख्श दता है। ये अकाल पुरख की कृपा है, ये वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा है, इस विच अपनी कोई ताकत नहीं है। ते दूसरी कृपा जीव की मनुख की अपने आप ते हुंदी है कि यह प्रभु का परमेश्वर का नाम जपे, सत्संगत करे, सेवा करे। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आप ते कृपा करे, कुछ मेहनत करे, उद्यम करेंद ज्यू तू कमाप दया सुख पुंच, ध्यान दया तू प्रभु में नानक उतरी चिंत। यह अपने आप ते कृपा करे, संगत विच जावे, वैसे यह भी कृपा वाहिगुरु परमेश्वर की है, संगत विच जो सत्संगत की प्राप्ति है। फिर इसने क्या कृपा करनी है, गुरु दे वचना नूं कमाउणा है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। अपने आप ते कृपा करनी है। दूसरी कृपा
अपने आप ते करनी है, ए नहीं कन च नूं पा के दूसरे कन च नूं नहीं कढ़ना है। ते असीं कमाउण दी कोशिश करनी है, असीं दृढ़ता दे नाल सेवा करनी है, सिमरन करना है, उस परमेश्वर दा धन्नवाद करना है, अकिरत कन नहीं होना है, नाम जपना है। ये अपने आप ते कृपा है। फिर तीसरी कृपा गुरु करदा है। बोलो सतनाम। तीसरी कृपा गुरु करदा है। गुरु कृपा की करदा है? जे कोई अपना गुरु दे वचना नूं कमाउंदा है, सत्संगत करदा है, सेवन सेवा करदा है, सिमरन करदा है, नाम जपदा है, फिर गुरु दी कृपा दे गुरु कृपा करदा है। गुरु उस नूं परमात्मा दे नाल विछड़े होए नूं मिला देंदा है। बोलो। पहली कृपा तां वाहिगुरू ने कर दित्ती, अकाल पुरख ने कर दित्ती, सानूं इह मनुखा जन्म दे दित्ता है, अखां हथ पैर ए शरीर इंद्रिय सानू बख्श दिते हैं। दूसरी कृपा असीं अपने आप ते खुद करनी है। तीसरी कृपा गुरु करनगे। बोलो।

जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बुद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु दी शरण विचो तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

अखी चढ़ाओ चढ़न दा। भगत कबीर जी नू सेवका ने पुछया सी, महाराज तुसी स्वर्ग भी निंद दिते ते कह रहे हो भाई पूर्ण गुरु जी।

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सै जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सै हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा सिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भुल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

मुस्कराए, कहन लगे भाई तू ते कहंदा सी बड़ा निर्मल शहद है, बड़ा स्वच्छ शहद है, पर एदे तां कीड़े भरे पए ने। पसीना आ गया, कंब गया, चरण पकड़ ले सच्चे पातशाह, इस खेड़ तो मैं अनजान हां, ए किवें पाणा वरतिया। पातशाह बख्श लो, हजूर कहन लगे गुरमुखा जिस वेले मंगया सी उस वेले ते दिता कोई नहीं, बड़े तरले पाए, बड़े वास्ते पाए, उस वेले ते दिता कोई ना, हुण की लैण वास्ते आए। जे किते थोड़ा जा शायद उत्थे दे दिंदा उस बुजुर्ग नूं तां मैनूं पहुंच जाणा सी। ओ सेवा मेरी सी, किसे लाचार दी सेवा, किसे बेसहारे दी सेवा, ओ मेरी सेवा, ओ गुरु की सेवा है। ए सेवा इस भावना नाल कीती जावे तां गुरु प्रवान करदा है, क्योंकि गुरु सारी सृष्टि नाल प्यार करदा, गुरु हरक जीव नाल प्यार करदा है, ओ ते हरक नू जी दान दिंदा है। ऐसा है मेरा सतगुरु जो मनुख मात्र नू प्रेरणा दे रहे ने, भाई सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले, तेरा मन टिक जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और यह लोक सुखिए परलोक सुहेले हो जाएंगे।

लाल खोई है। फिर ए अवसर कद लाहा, गुरु की बाणी कह रही है कि ए मनुख तू अमोलक हीरे लाला तो भी महंगे अपने श्वास धंधिया विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी न्याई हन जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे किते कोई होर ना लै जावे किते कोई होर मुसीबत ना पह जावे जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जाए रात नू नींद नहीं सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा अपनी उठदा पर धनवान बंदे नू नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया काच बादरे लाल खोई है तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नू खरीद के अपने आप नू बड़ा धनवान समझना बड़ा बलवान समझना भई मेरे वर्गा कोई नहीं पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़न गे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार होंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जजीर पा के रखदे सन कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चले उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़ चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़ की लै गया भाई नाल की जाएगा हजूर कहंदे नाल इना जेड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी हजूर कहन लगे नाल ता एक सुई भी नहीं जानी ते तू एना धन कठा करी फिर दे कहन लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल लै जावा। हजूर कहन लगे भाई नाल ता लै जा सकना तू जे साडे आखे लगे महाराज हुक्म करो कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़ बंदा नू वंड दे ओदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी उच्चारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश कर दिया ओ मित्रा धन ता तू नाम दा कठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा तैनू सोती नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

के पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इना सारे श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है मेरे कोल टाइम ही नहीं होता, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण ता भी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तेनू गुरु ने तन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार में बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? ये ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल यह है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होता सी, दुनिया ते एदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसका नाम सी, इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ए 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है, नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़िआं विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है उह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तेनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात मार

को पायो तिन तिन अपनो राज लायो जिन जिन तनक सिद्ध को पायो तिन तिन अपनो राज चलायो तिन तिन अपनो राज चलायो। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज बचित्र नाटक दे अंदर अपनी पावन गुरबाणी ते अकाल पुरख दे सामने होया होया प्रोमिस गरीब नूं आज सचे पातशाह जी दे सामने कीता होया वचन भई मेरे अकाल पुरख नाल मेरी केड़ी केड़ी गलबात होई तां मैं संसार दे अंदर अवतार धारिया। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह अपने पहले जन्म दी हिस्टरी दस रहे ने बचित्र नाटक दे अंदर ते आरंभ करदे हन भी जदों संसार दी उत्पत्ति होई किन्ने राजे महाराजे आए किन्ना वंश विचों जन्म लैंदिया होया साडी ए सोटी वंश उत्पन्न होई। गरीब नवाज सचे पातशाह ने कथन की

ताते सूरज रूप को धरा। इन्हां दे विच्चों बंस चली ते सूरज नाम दा राजा पैदा होया। सूरज नाम दा राजा संसार दे अंदर काफी समय तक राज करदा रहा। ताते सूरज रूप को

संसार चो राज करदिया होया राम चंद्र लक्ष्मण भरत शत्रु ते भरत ए चारे दे चारे चले गए ते सीता दी कुखों दो राजिया ने जन्म लिया सी सुत बहुर भय दोए राजा राज पाठ उन्हीं को साजा उन्हां दा नाम सी लव ते कुशु।

से बासन तने दर्ख की न तहाई नवासन, धने बर्ख की न तहाई नवासन। लवी जित गए ते कुशी हार गए, कुशी जड़े ने कांशी विच आगे बह गए, कुशियां ने कांशी दे विच आके वेद याद कीते, वेदां दा पाठ सुन सुन के पढ़ पढ़ के ए फिर कांशी विचों जदों महान पंडित बन गए ना, इन्हां दा नाम पै गया बेदी, ते लवी वंश वालियां दा नाम पै गया सोढ़ी। ए सोढ़ी ते बेदी, बेदी वंश चों गुरु नानक देव जी महाराज ने अवतार धारिया, ते सोढ़ी वंश विचों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अवतार धारिया। कहिंदे वी बेदियां दा ते सोढ़ियां दा मिलाप हो गया, बड़े पंडित बन गए महान विद्वान। इन्होंने आके वेद दियां रिचां उपांगां उच्चारण कीतियां इस राज दे अंदर, ते लवी बड़ा प्रसन्न होया, कहन लगा तू कौन है? कहिंदा मैं तेरा भरा जिसने मार के भजाया सी, तू मार के भजाया सी ना, मैं ओ हां। कहन लगा मैं तेरे वेदां नूं सुन के बड़ा प्रसन्न होया, तू ब्रह्म दी ज्ञानता प्राप्त कर चुका, तैनू मैं राज भाग सौंप दिता, अज तो यह साडा राज भाग तेरे हवाले कर दिता। जिन बेद पठेओ सो बेदी कहायो, तिन धर्म का कर्म नीके चलायो। ते वेद पढ़न दे नाल ते सुनन दे नाल सारे दा सारा राज भाग महाराज बेदी ने बेदियां नूं दे दिता लवियां ने। ते बेदी कहन लगे भी महाराज तुसी वड्डे भराता हो, सानू हुण तुसी राज दे दिता, ए साडे सिर उपर एक करजा है, ते असी ये राज तुहाडे वापस देना ही देना, तुहाडे हवाले तुहाडी अमानत करनी ही करनी है, फिर कदों करिए? ते बेदी कहन लगे भाई पहले जन्म ते असी आवांगे गुरु नानक दा रूप धारण करके साडी वंश विच उत्पन्न होणगे, पहला दूजा तीजा वंश जदों चल पाएगा ना, ते चौथे जन्म दे अंदर जदों गुरु होवांगे गुरु रामदास दे नाम दे नाल, तेरा प्रकाश होएगा लाहौर शहर दे अंदर, तेरा नाम होएगा रामदास। चौथे जन्म विच आके तैनू असी दित्ती होई अमानत वापस कर देंगे, तैनू गुरु थापना कर देंगे, गुरु थाप के तैनू संसार दे विच दित्ती होई अमानत तेरे हवाले कर। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी इह विचित्र नाटक है, बड़ी महान रचना, समय दे अंदर पूरी नहीं होंदी इह जिहड़ी वार्ता, दो ढाई घंटे दी लम्मी वार्ता है। इस करके साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे इत्थों तक अकाल पुरख महाराज दे चरणा दे विच बिणे होई उन्हां दे सामने ए वाक होया, ते अकाल पुरख ने सारी दी सारी वार्ता सुना दित्ती, भई हुण तैनू संसार विच अवतार लैणा पैणा, ना तू पत्थरां नूं पूजक होएगा, कहो प्रभु सुपाख हो। मैं महाराज अकाल पुरख नूं कहा, की कहा? किसू ना कान रख हो, किसू ना भेख बीज हो, अलेख बीज बीज हो, मैं किसे दे भेख विच नहीं भेजांगा, पत्थरां दी पूजा नहीं करांगा, महाराज तेरे पंथ नूं तेरे वंश नूं संसार विच उत्पन्न करांगा, उस दा नाम होएगा खालसा। ए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वाक कीता, ए जिहड़ा नाराज छंद जिहड़ा लिखिया होया आप जी दे पास, गरीब नवाज साहिब सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे ए अकाल पुरख दे सामने एक मैं प्रोमिस कीता, ओह मैं पूरा कर रहा, ते खालसा बना रहा। खालसा संपूर्ण होके पत्थरां दी पूजा नहीं करेगा, जटा जड़ी है सिर ते नहीं बनाएगा, किसे अकाल पुरख महाराज नूं छड़ के किसे होर दी पूजा विच नहीं रुझेगा। ए मेरे खालसे दे प्रति मेरी एक बिनय है, जिवें मैं अपने अकाल पुरख दे चरणां च एक बिनय कीती सी, लिख दें।